0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना, आप सुन रहे हैं रेडियो DS89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो DS के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से आज का बालक कमजोर नहीं अकेला हो गया, आपके रेडियो दोस्त ऋषि मीणा के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आज का बालक कमजोर नहीं बल्कि अकेला हो गया है। आधुनिक जीवन शैली ने बच्चों को शारीरिक रूप से कमजोर और भावनात्मक रूप से अकेला बना दिया है। क्यों हो रहा है ये और क्या करना चाहिए, ये बिंदु स्कूल अभिभावकों और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों हो रहा है ये? कारण एक, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल टीवी गेम्स में घंटों बिताने से शारीरिक गतिविधि कम हो गई। दो, घर से बाहर खेलने का समय कम, पार्क और मैदान खाली, बच्चे घर के अंदर बंद। तीन, जंक फूड और अनियमित खान पान, पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, जिससे कमजोरी बढ़ रही। चार, पढ़ाई का भारी दबाव, कोचिंग ट्यूशन और प्रतियोगिता ने खेल और आराम का समय छीन लिया। पाँच, परिवार का छोटा होना, न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी की कहानियाँ और स्नेह कम हो गया। छह, सोशल मीडिया की लत, लाइक्स के चक्कर में असली दोस्ती और रिश्ते कमजोर। सात, नींद की कमी, रात देर तक मोबाइल देखने से थकान और कमजोरी। आठ, माता पिता का व्यस्त समय, दोनों माता पिता काम में, बच्चे अकेले रह जाते हैं। नौ, शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा, स्कूलों में भी खेल का समय घटा दिया गया। दस, भावनात्मक समर्थन की कमी, बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर अकेलेपन का एहसास। क्या करना चाहिए? समाधान ग्यारह, प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेले, आउटडोर खेल, फुटबॉल कबड्डी दौड़ना। बारह, स्क्रीन टाइम सीमित करें, दिन में एक दो घंटे से ज्यादा नहीं और रात 8 बजे के बाद मोबाइल बंद। तेरह, संतुलित और घर का खाना, फल सब्जियां दूध अंडा अनाज, जंक फूड को कम करें। 14, परिवार के साथ डिनर टाइम, रोज एक समय साथ बैठकर बातें करें, अनुभव शेयर करें। 15, स्कूल में खेल को बढ़ावा, हर दिन खेल का पीरियड अनिवार्य, इंटर स्कूल मैच आयोजित करें। 16, भावनाओं को व्यक्त करने की आदत, बच्चे अपनी खुशी गम बताएं, माता पिता सुने। 17, दोस्तों के साथ ऑफलाइन समय, घर पर बोर्ड गेम, किताबें पढ़ना, साइकिलिंग। 18, नींद का पूरा समय, रात 9-10 बजे सोना और सुबह जल्दी उठना। 19, योग और प्राणायाम, स्कूल में रोज 10-15 मिनट योग, शरीर और मन दोनों मजबूत। 20, माता पिता का सक्रिय रोल, सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चे के साथ पूरा समय बिताएं। 21, पुस्तक पढ़ने की आदत, स्क्रीन की जगह किताबें, कल्पना शक्ति और एकाग्रता बढ़ेगी। 22, समूह गतिविधियां, स्काउटिंग, नृत्य, संगीत, कला क्लब, अकेलेपन को दूर करें। 23, स्कूल और घर का सहयोग, अभिभावक शिक्षक मीटिंग में शारीरिक स्वास्थ्य पर चर्चा। 24, आत्मविश्वास बढ़ाना, छोटी छोटी सफलताओं को सराहे, गलतियों से सीखें। 25, प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ लगाना, पार्क में समय बिताना, पक्षी पशु देखना, मन शांत और मजबूत होता है। ऋषि मीणा कहते हैं, दोस्तों आज का बालक कमजोर नहीं है, बस उसे सही दिशा और समय की जरूरत है। अगर हम आज से ही छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो कल हमारे बच्चे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और खुशहाल होंगे। याद रखिए, बच्चे कमजोर नहीं होते, हमारी जीवन शैली उन्हें कमजोर बनाती है। डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से ये संदेश जनहित में जारी किया गया है।

गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार गंगापुर सिटी। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून कर रहे हैं 99.6 रेडियो ओडियस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन पसंद कार्यक्रम हल्लू फरमाइश। दोस्तों करते हैं कार्यक्रम का आगाज और लेकर चलते हैं आपको पहली कॉल के साथ। फिलहाल गंगापुर सिटी का तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के साथ।

0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
1: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है। मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर, स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापक, अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब आदि, सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ, संगीत, नृत्य, चित्रकला, खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान, सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण, स्कूल बस वाहन की व्यवस्था, पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस। ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने, लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है। वर्तमान में एडमिशन ओपन है। स्कूल का पता:
0: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल,
1: कर्मचारी कॉलोनी, सैनिक नगर क्षेत्र, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान। ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है।
2: नमस्ते दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके बच्चों के लिए आसान और मजेदार बन जाए? कक्षा 7वीं से 10वीं तक के बच्चों के लिए फाउंडेशन और स्टेट बोर्ड के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो डीएस साइंस एकेडमी आपकी सही मंजिल है। यहाँ मिलता है स्मार्ट टीचिंग मेथड, कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग, एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड फैकल्टी, रेगुलर पेरेंट्स अपडेट, मोटिवेशनल गाइडेंस, वीकली टेस्ट, परफॉर्मेंस एनालिसिस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी तैयारी और हॉस्टल सुविधा भी उपलब्ध। हमारा लक्ष्य सिर्फ मार्क्स बढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की मजबूत नींव बनाना है। स्मॉल बैचेस में बेहतर ध्यान और व्यक्तिगत देखभाल। आज ही ज्वाइन इन करें और अपनी साइंस करियर की स्ट्रॉन्ग शुरुआत करें।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: जी मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ मैं, जिला बिजली समाज प्रदेश नागरी से।
0: हारून जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: फिल्म का नाम है स्टेटमैन
0: जी।
1: गाने के बोल हैं आज मिले हो कल फिर मिलना
0: जी। बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डेस्क में। कुल के धन्यवाद।

0: पहले आपका नाम बताएं जी।
1: क्या
0: आपका नाम बताएं?
1: मेरा नाम है तन्नू सिंह।
0: तन्नू सिंह जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: गंगापुर सिटी से कर रहे हैं।
0: अब बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं सरावी नहीं हूँ तो बोतल ना दो वाला सॉन्ग लगा लो।
0: बिल्कुल तन्नू जी सुना रहे हैं आपको, आपकी फरमाइश है। सॉन्ग रेडियो

0: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS

0: योगेश जी बताए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: गाना भी आप हमें दूध का कर्ज मूवी से सुनवा देंगे
0: जी। कौन सा गाना है?
1: गाना उसमें है, देख लेंगे, बढ़िया सा मेरे दूध का कर्ज निभाना टाइटल ही है।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6
2: शहर का नया मैजिक, रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6।

0: दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6-3-7-8-0-2-4-4-7-5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशंसा अग्रवाल, 9th क्लास। रिसेंटली मैंने प्रेस साइंस ओलंपियाड में 6th जोनल रैंक प्राप्त की है। मैं DS साइंस एकेडमी में 6th क्लास से प्री फाउंडेशन में हूँ। DS में आने से पहले फाउंडेशन क्या होता है उससे मैं बिल्कुल ही अनजान थी। यूं तो बहुत सारे संस्थान फाउंडेशन पढ़ाने का दावा करते हैं, लेकिन जब वहाँ के टेस्ट पेपर्स और मटेरियल की तुलना की जाती है तो वह DS के मटेरियल से बहुत ही कम

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: नाथू।
1: नाथू जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: रेडियो डीएस।
1: बताएं नाथू जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
0: गाना महाराज का गाना ना जाना, मुझे सभा में रंग बरसा जाना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का ये बात।
0: हाँ,

0: जी नाम बताएं।
1: गुलशन।
0: गुलशन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं गुलशन जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: कोरी मैनू कैंडी मैनू जिस्ती लादे सोनिया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश कहे तो।

0: हेलो
1: हेलो,
0: नाम बताइए सर आपका।
1: अमित सैनी।
0: सैनी जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर पेटे।
0: पता है सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं लुलु लेके आया।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ही कोई।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं आपका?
0: वासुदेव गुर्जर।
1: वासुदेव गुर्जर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: गंगापुर सिटी।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: हैप्पी बर्थडे टू यू।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश का सॉन्ग रेडियो डीएस में खोल के। धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं आपका।
0: आरबी गुजर।
1: आरबी गुजर जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: मोतीपुरा।
1: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: हेलो
1: जी, नाम बताए सर।
0: सौरभ कुमार मीना
1: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
0: करौली से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: जी चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
1: चौधरी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: गाना सर योगी एस के लिए सफर एक लाए हैं।
1: बताएं सर।
0: और जो सुनेगा उसी का वेड़ा पार लिखो सर।
1: बताएं।
0: सारे जहाँ की
1: जी
0: अमानत है ये।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश कैसे हो।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: मैं ये सलमानी।
1: सलमानी जी गाना बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: सर आज गाना सुना दो, नसीब पिक्चर का गाना है।
1: कौन सा
0: सर? गाने के बोल है
1: तो। आवाज कट रही है सर आपकी।
0: सर तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी।
0: ओके सर।

0: इन्हें सब कौन है?
1: ये वही मेम साहब है जिनकी साहब के कमरे में तस्वीरें लगी हुई हैं। इन्हीं की मेहरबानियों से साहब का ये हाल है।

0: गुड मॉर्निंग, नाम बताएं सर आपका?
1: ये सॉरी सैफी।
0: सैफी जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे?
1: आज गाना सुनना चाहते हैं दिल लगाने की सजा तो ना दोगे?
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
0: नाम परी।
1: परी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मिर्जापुर से।
1: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: मुमताज सॉन्ग।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
1: रूपचंद जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं
0: सर? आज गीत सुनना है, पिक्चर का नाम है पिया का घर और गीत के बोले यह जीवन है।

0: तो
1: हाँ जी,
0: नाम बताए सर
1: जी का गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं?
0: बताए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैं चक्की आना बेटे का नाम बोले।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी सुनवाई।

0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: केमा
0: से। केमा से बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मुझे सुनना है डांडा न्योरी वाला का दिल दे बैठी।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश पे। सॉन्ग रेडियो डेज पर कॉल किया, धन्यवाद।

0: नाम बताएं सर।
1: हेलो
2: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: अस्मा खान।
0: अस्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताएं मैम, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैं गाना सुनना चाहती हूँ आशिकी आ गई।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश का सॉन्ग।

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं। पटिक जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: लोग मजरी पीछे से।
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
0: ये हमारे जाकर मुल्ला के ऊपर दिल पे चला चुरियां।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो सर जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्ते, नाम बताएं सर।
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से।
0: तुलसीराम जी बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मेरे गोरे गालों का रेशमी बालों का।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपका, आपकी फरमाइश पे।
1: धन्यवाद सर जी।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:22 का। इस वक्त आप मेरे साथ ऑन करें 99.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो पर।

0: हेलो
1: हेलो,
0: ये नाम बताएं।
1: धीरू भाई ठाकुर।
0: धीरू भाई जी बताएं, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना है वो

0: हेलो जी, नाम बताइए सर।
1: अरुण
0: अरुण जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी से।
0: बताइए सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आशिक पुराने थे वो।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी समय से।

एंड जेंटलमैन, आज हमारे बीच मिस्टर एंड मिसेस पेस्टन जी अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं। लेट्स गिव देम अ बिग हैंड।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्ते।
0: नमस्ते सर, नाम बताएं आपका।
1: सरफुद्दीन।
0: सरफुद्दीन जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: ये अस्पताल रोड से।
0: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप रेडियो डीएस से?
1: दिल मेरा तोड़ दिया उसने, वो प्यार करे ना करे।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश का एक गाना दे दीजिए।

0: आई मैं सिमरन बोल रही हूँ। अपना नाम और मैसेज एक बीप के बाद छोड़िए, मैं आपको कॉन्टेक्ट करूँगी। थैंक यू।
1: हेलो सिमरन, सिमरन मैं जानता हूँ तुम वहीं पर हो। सिमरन प्लीज पिक अप द फोन, प्लीज सिमरन प्लीज पिक अप द फोन। सिमरन प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज सिमरन।

0: हेलो,
1: नाम बताएं सर।
0: आयुष शर्मा।
1: आयुष जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: गंगापुर से।
1: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
0: बेरन।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश। सॉन्ग रेडियो डेज़ को खोल के बने।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: हेलो
1: नमस्कार सर।
0: सर नमस्ते, नाम बताएं आपका।
1: हाँ रतन लाल बोल रहा हूँ, महुकला पुलिस चौकी के पास से।
0: रतन जी बताएं आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस पे।
1: ये रोम रोम पर बसने वाले राम जगत के स्वामी हो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू।
0: बिल्कुल सुना रहा हूँ सर आपकी फरमाइश का ये गाना।

0: जी नाम बताएं। नीता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: बाबू से के।
0: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: सैया सैया
0: सैया सैया।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: Hello friends, my name is Aastha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: हेलो
2: हेलो,
1: नाम बताएं जी आपका।
2: कोमल।
1: कोमल जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी।
1: बताएं कोमल जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
2: इश्क ना करना।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं आपकी फरमाइश के सॉन्ग रेडियो डीएस में खोल किया। धन्यवाद।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ
3: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानव शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377, इसके अलावा 9983413111।
4: हेलो, नाम बताइए।
5: हेमंत कुमार।
4: हेमंत जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
5: नसिया कॉलोनी।
4: बताएं कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
5: कौन सा गाना? बोल,
6: तेरी हम डोल बोलेगी।
4: तेरी हम डोल बोलेगी।
6: हाँ
4: बिल्कुल, सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का ये सॉन्ग।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी 90% से अधिक 110 विद्यार्थी 85% से अधिक 251 विद्यार्थी 80% से अधिक 407 विद्यार्थी हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा यशांसी सिंगल अदिति मीना अश्विनी दोई सोनम मीना शुभम मीना खुशी गर्ग आकाश कुमार मीना प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र एग्जाम कोई भी हो डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9 10 11 12 विद साइंस स्ट्रीम डीएस साइंस एकेडमी एफसीआई गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी संपर्क करें 8005598377 इसके अलावा 9983413111
4: डीएस साइंस एकेडमी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 10th परीक्षा परिणाम 2026 हमारे स्टार परफॉर्मर्स 99% से अधिक 1 विद्यार्थी 98% से अधिक 7 विद्यार्थी 97% से अधिक 28 विद्यार्थी 96% से अधिक 53 विद्यार्थी 95% से अधिक 76 विद्यार्थी 90% से अधिक 252 विद्यार्थी अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा डीएस साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा हम क्या देते हैं AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड RBSE एंड CBSE एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल सिनोनिम ऑफ सक्सेस एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2026-27 लिमिटेड सीट्स
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी
6: ये डीएस साइंस एकेडमी के मार्गदर्शन में चलता है और कक्षा 1 से 8 या इससे आगे तक शिक्षा प्रदान करता है मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासन और नैतिक मूल्यों पर जोर स्मार्ट और गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था प्रशिक्षित अध्यापक अलग अलग सुसज्जित लैबोरेटरीज कंप्यूटर लैब साइंस लैब आदि सर्वांगीण विकास के लिए अतिरिक्त गतिविधियाँ संगीत नृत्य चित्रकला खेल सुविधाएं और शारीरिक विकास पर ध्यान सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण स्कूल बस वाहन की व्यवस्था पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष फोकस ये को एजुकेशनल है और बच्चों के मजेदार तरीके से सीखने लर्निंग थ्रू फन पर जोर देता है वर्तमान में एडमिशन ओपन है स्कूल का पता
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
6: कर्मचारी कॉलोनी सैनिक नगर क्षेत्र गंगापुर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
7: नमस्कार गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी दिल से दिल तक

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: हर बीट में है शहर का कमाल। डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: रेडियो डीएस बचपन सेकेंडरी स्कूल की ओर से आज का बालक कमजोर नहीं अकेला हो गया, आपके रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर। आज का बालक कमजोर नहीं बल्कि अकेला हो गया है। आधुनिक जीवन शैली ने बच्चों को शारीरिक रूप से कमजोर और भावनात्मक रूप से अकेला बना दिया है। क्यों हो रहा है ये और क्या करना चाहिए? ये बिंदु स्कूल, अभिभावकों और बच्चों के लिए बहुत उपयोगी है। क्यों हो रहा है ये?

0: कारण एक, अत्यधिक स्क्रीन टाइम, मोबाइल, टीवी, गेम्स में घंटों बिताने से शारीरिक गतिविधि कम हो गई। दो, घर से बाहर खेलने का समय कम, पार्क और मैदान खाली, बच्चे घर के अंदर बंद। तीन, जंक फूड और अनियमित खान पान, पौष्टिक भोजन की जगह फास्ट फूड, जिससे कमजोरी बढ़ रही। चार, पढ़ाई का भारी दबाव, कोचिंग, ट्यूशन और प्रतियोगिता ने खेल और आराम का समय छीन लिया। पाँच, परिवार का छोटा होना, न्यूक्लियर फैमिली में दादा दादी की कहानियाँ और स्नेह कम हो गया। छह, सोशल मीडिया की लत, लाइक्स के चक्कर में असली दोस्ती और रिश्ते कमजोर। सात, नींद की कमी, रात देर तक मोबाइल देखने से थकान और कमजोरी। आठ, माता पिता का व्यस्त समय, दोनों माता पिता काम में, बच्चे अकेले रह जाते हैं। नौ, शारीरिक व्यायाम की उपेक्षा, स्कूलों में भी खेल का समय घटा दिया गया। दस, भावनात्मक समर्थन की कमी, बच्चे अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर अकेलेपन का एहसास। क्या करना चाहिए? समाधान ग्यारह, प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेलें, आउटडोर खेल, फुटबॉल, कबड्डी, दौड़ना। बारह, स्क्रीन टाइम सीमित करें, दिन में एक दो घंटे से ज्यादा नहीं और रात 8 बजे के बाद मोबाइल बंद। तेरह, संतुलित और घर का खाना, फल, सब्जियां, दूध, अंडा, अनाज, जंक फूड को कम करें। 14, परिवार के साथ डिनर टाइम, रोज एक समय साथ बैठकर बातें करें, अनुभव शेयर करें। 15, स्कूल में खेल को बढ़ावा, हर दिन खेल का पीरियड अनिवार्य, इंटर स्कूल मैच आयोजित करें। 16, भावनाओं को व्यक्त करने की आदत, बच्चे अपनी खुशी गम बताएं, माता पिता सुने। 17, दोस्तों के साथ ऑफलाइन समय, घर पर बोर्ड गेम, किताबें पढ़ना, साइकिलिंग। 18, नींद का पूरा।
1: This call is now being recorded.
2: Hello.
3: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
2: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल सर, नाम क्या है आपका?
2: दर्पण, मेरा नाम है गीता सिंह मान, रोड तलावंडी साबो डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब का।
3: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: अरे आज मैंने गाना सुना दे, फकीरा फिल्म का गाना है, लता जी के मदरा भाई का, तोता मैना की कहानी तो पुरानी हो गई।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: है।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डॉक क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अजय मैम।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हैं?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: लेला राम राम।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो
2: सर नमस्ते
1: जी बहना जी, आदरणीय आरजे पलक बहना जी को मेरा प्यार भरा प्रणाम प्रणाम प्रणाम।
2: नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
1: जी मैं राजू यादव, ग्राम उपरेखा श्रीराम पुडे सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
2: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हमको भूल न जाना,
2: ओ कितने
1: लौट के आना।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रही
1: हूँ?
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: और
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना

0: जी, नाम क्या है आपका?
1: कशिश।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: काला शाह काला।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश करिएगा।

दोस्तों वक्त हो चुका है 12:35 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों मिलते हैं थोड़ी ही देर में 1 बजे नए तराने कार्यक्रम के साथ। सुनते रहिए आपके मनपसंद कार्यक्रम।

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: DS साइंस एकेडमी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, कक्षा 10th परीक्षा, परिणाम 2026। हमारे स्टार परफॉर्मर्स, 99% से अधिक एक विद्यार्थी, 98% से अधिक 7 विद्यार्थी, 97% से अधिक 28 विद्यार्थी, 96% से अधिक 53 विद्यार्थी, 95% से अधिक 76 विद्यार्थी, 90% से अधिक 252 विद्यार्थी। अब आपकी बारी है 10th बोर्ड 2027 में 95% प्लस स्कोर का सपना अब हकीकत बनेगा। DS साइंस एकेडमी में दाखिला ले और बने टॉपर बैच 2027 का हिस्सा। हम क्या देते हैं? AIIT JEE 6 से 12 तक फाउंडेशन एंड बोर्ड, RBSE एंड CBSE, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड लेटेस्ट स्टडी मटेरियल, सिनोनिम ऑफ सक्सेस, एडमिशन ओपन।
4: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:00। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी देर में आप सुन रहे हो मेरे साथ नए तराने, कार्यक्रम 89.6 रेडियो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
3: भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सभी देश हमारे मसालों और कपड़ों आदि के लिए भारत पर ही निर्भर थे। उस वक्त लोग पक्की इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आशियानों में रहा करते थे और कुएं व नदियों से पानी पिया करते थे। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से खूबसूरत कलाकारी किया करते थे। तब भारत में नोट नहीं बल्कि सामान के बदले सामान से आदान प्रदान किया जाता था। उस वक्त भारत की अधिकांश जनता शहरों में नहीं बल्कि गांव में बसा करती थी। इसी के चलते पुरानी यादें ताजा कर आज हम आपकी मुलाकात असली भारत से कराने जा रहे हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। कहते हैं कि इतिहास हमेशा बुरा नहीं होता है बल्कि उसमें कुछ यादें बसी होती हैं, जिन्हें याद कर हम फिर से मीठी यादों में खो जाते हैं। 1000 साल पहले की अगर बात करें तो ये वो समय था जो मध्यकालीन युग में आता था। ये वो दौर था जब भारत में भारतीय शासक तो राज कर ही रहे थे बल्कि कई विदेशी शासकों ने यहाँ आक्रमण कर अपना शासन जमा लिया था। दरअसल भारतीय शासकों में उस वक्त एकता का अभाव था। हर कोई अपनी मर्जी से देश को चलाना चाहता था, इसीलिए देश के अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न शासकों का शासन था और इसी बात का फायदा उठाकर यहाँ विदेशी शासन अपना अधिकार जमाने के लिए आक्रमण करने लगे। 1000 साल पहले भारत में पल्लवा, चौलकिया, पांड्या और चौल के अलावा राष्ट्रकूटा जैसे राजवंशों का राज हुआ करता था। 1000 साल पहले होने वाले व्यापार पर नजर डालें तो तब आज की तरह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती थी। उस वक्त भारत में केवल कपड़े, मसाले और खानपान की चीजों का व्यापार किया जाता था। भारत में इन चीजों की इतनी पैदावार होती थी कि इन्हें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता था। ताजा जानकारी के मुताबिक तब दुनिया में भारत का गुड्स एंड फूड सर्विसेज का 30% का योगदान था। वहीं दुनिया में चीन का 25% और यूरोप का 11% का योगदान था। इस लिहाज से ये माना जाता है कि उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या इन तीनों देशों में ही बसा करती थी। अमेरिका, लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्दर्न रशिया में काफी कम जनसंख्या थी। प्राचीन भारत में अधिकांश व्यापार सामान के बदले सामान पर ही निर्भर था। यानी अगर आपने कुछ सामान खरीदा है तो आप अपने पास मौजूद सामान को देकर दूसरी वस्तु खरीद सकते हैं। मतलब अनाज के बदले फल व सब्जियां खरीदना या फिर कपड़े के बदले बर्तन आदि खरीदना। उस वक्त मुद्रा काफी सीमित संख्या में और सीमित लोगों के पास ही हुआ करती थी, इसलिए लोग अपनी जरूरतों की पूर्ति एक दूसरे को सामान लेकर या देकर पूरी किया करते थे। तब के समय में फैमिली बिजनेस को अहमियत दी जाती थी, यानी अगर किसी का काम सुनार या लोहार का है तो उसका बेटा भी वही काम किया करता था। इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी सभी एक ही काम करते थे, जबकि वर्तमान में ऐसा कतई नहीं है। अब सभी लोग अपनी एजुकेशन के हिसाब से अपना कार्य चुनते हैं और उसी में आगे बढ़ते हैं। 1000 साल पहले आज की तरह शहरों में मंडी और बाजार हुआ करते थे, जहां आधुनिक भारत में एक सुई से लेकर मोबाइल फोन तक सभी सामान की अलग अलग दुकानें होती हैं। वहीं प्राचीन भारत में केवल सोना, चांदी, कपड़ा, इत्र और बर्तन के अलावा खान पान की सामग्री जैसे फल, सब्जियां और अनाज आदि की दुकानें हुआ करती थी। उस वक्त लग्जरी आइटम्स की दुकानें न के बराबर थी। खेती और पशुपालन ही लोगों का मुख्य व्यवसाय होता था। उस समय के लोग काफी मेहनती होते थे और कलाकारी के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था। सुनार, लोहार, कुम्हार, हस्तकार आदि सभी अपने अपने काम में इतने कुशल थे कि आज भी भारतीय कलाकारी को दुनिया भर में सराहा जाता है। 1000 साल पहले के कारीगरों के हाथों में इतना हुनर था कि उनके आगे आज की मशीनें भी फेल हैं। उदाहरण के तौर पर आप किसी भी किले की शानदार नक्काशी को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जहां आधुनिक समय में यातायात के साधन इतने विकसित हो गए हैं कि हम पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं, लेकिन 1000 साल पहले का वक्त बिल्कुल अलग था। तब

0: हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
1: गाड़ी, नाव या फिर पालकी द्वारा ही दूरियां तय करते थे। तब ट्रांसपोर्ट के साधन काफी सीमित हुआ करते थे और आम लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इन साधनों का भी लाभ उठा सकें। प्राचीन काल में लोग पैदल चलकर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते थे, इसलिए तब के लोग कुछ किलोमीटर की दुनिया में ही खोए रहते थे। उनकी दुनिया काफी सीमित थी। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि भारत में हर 10 किलोमीटर पर बोलियां बदल जाती हैं। यानी भारत में इतनी सारी भाषाओं की अपनी अपनी बोलियां भी हैं और ऐसे में कुछ किलोमीटर जाने पर लोगों को एक दूसरे की बोली समझना मुश्किल हो जाता था। जहां आज लोग शहरों की ओर भागते हैं, जबकि 1000 साल पहले भारत की अधिकांश जनता गांव में निवास करती थी। एक अनुमान के हिसाब से गांव में 90% जनसंख्या रहा करती थी, जबकि शहरों में केवल 10% या इससे भी कम जनसंख्या रहना पसंद करती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां आज के समय में सरकार को पानी को रिजर्व रखने के लिए योजना चलानी पड़ रही है, जबकि 1000 साल पहले के लोग इतने समझदार थे कि वो पानी के संरक्षण के महत्व को बहुत अच्छे से जानते थे। उस वक्त पानी की संरक्षण करने के लिए गांव में तालाब हुआ करते थे और जहां तालाबों की कमी होती थी वहां उन्हें खुदवा कर तैयार किया जाता था। प्राचीन भारत के अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे। वो पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों में काफी विश्वास रखते थे, इसलिए तब गांव-गांव में मंदिर होते थे और हर गांव में एक कुल देवता का मंदिर भी हुआ करता था। अगर आपने गौर किया हो तो आपको जरूर मालूम होगा कि पहले के घर आज के घरों के मुकाबले काफी अच्छे माने जाते हैं। बेशक तब मिट्टी से घरों का निर्माण किया जाता था, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि उस वक्त के घर काफी मजबूत होते थे। आज भी आपको कई जगह उन पुराने घरों या हवेलियों के नमूने देखने को मिल जाएंगे। मिट्टी के बने इन घरों की एक खासियत भी होती थी कि उन घरों में ठंडक महसूस होती थी, जबकि वर्तमान में कंक्रीट और सीमेंट के बने मकान गर्मियों के दिनों में इतने तप जाते हैं कि उसमें बिना पंखे, कूलर या एसी के गुजारा नहीं है। आपको बता दें कि सीमेंट से निर्मित घरों की आयु 50 वर्ष लगभग होती है और कुछ ही सालों बाद इन मकानों में दरारें और सीलन आने लगती हैं, जबकि प्राचीन समय में चूने और मिट्टी से तैयार मकानों की उम्र तकरीबन 200 से 300 साल हुआ करती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राचीन काल में लोगों के बीच झगड़े या विवाद नहीं हुआ करते थे, मगर तब उनका फैसला कोर्ट नहीं बल्कि राजा सुनाते थे। राज्य के बड़े फैसलों के लिए राजा ही उत्तरदायी होते थे, पर छोटी छोटी समस्याओं का हल निकालने के लिए पंचों की मदद ली जाती थी। गांव के लड़ाई झगड़ों या किसी छोटी समस्या आदि का निपटारा पंच या सरपंच ही किया करते थे। एजुकेशन पर नजर डालें तो 1000 साल पहले आज की तरह बड़ी यूनिवर्सिटीज और स्कूल नहीं होते थे। तब गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उस समय वेद साहित्य को अधिक महत्व दिया जाता था। तक्षशिला में वैदिक साहित्य के साथ साथ 18 शिल्पों की भी शिक्षा दी जाती थी। विद्यार्थियों को एग्रीकल्चर, गणित, एस्ट्रोनॉमी और चिकित्सा जैसे विषयों को पढ़ाया जाता था। इस तरह विद्यार्थी साहित्य का अध्ययन करके स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका कमाने योग्य बन जाते थे। एक और अहम बात यह है कि उस वक्त लिखित के बजाय मौखिक शिक्षा अधिक प्रदान की जाती थी। 1000 साल पहले के दौरान लोग जाति और धर्म को बहुत मानते थे। छोटी जात के लोगों को बड़ी जात की लड़की या लड़के से विवाह करने की इजाजत नहीं थी। तब के समाज में लव मैरिज जैसा कोई शब्द नहीं था। उस वक्त सिर्फ अरेंज मैरिज को तवज्जो दी जाती थी और उसमें भी एक गांव या एक गोत्र के लड़के या लड़कियों की शादी आपस में नहीं कराई जाती थी। दोनों का अलग अलग गांव से होना जरूरी था। हालांकि तब सबसे नजदीकी गांव में शादी करा दी जाती थी। उस वक्त शादी समारोह एक या दो दिन नहीं बल्कि एक हफ्ते तक चलते थे। इसका एक अहम कारण ये भी है कि तब यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। बारात बैलगाड़ियों से निकलती थी। बेशक उस वक्त लोगों के पास काफी सीमित साधन थे, लेकिन वो एक खुशहाल और चैन की नींद सोते थे, जबकि आज का इंसान इतनी तरक्की करने के बावजूद डिप्रेशन और बीपी जैसी कई बीमारियों से पीड़ित है। खैर दोस्तों, 1000 साल पहले कुछ ऐसा नजारा हुआ करता था हमारे प्राचीन देश भारत का। क्या आप प्राचीन भारत के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं?

0: से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: अरे बेटा सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
3: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
2: बहू को अभी 2 दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
3: 2 दिन 2 साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: बता दिया है।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
3: तो वक्त हो चुका है दो बच्चों के। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 2:22 का समय। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस।
1: तेरे भरोसे पे सब बैठी हूँ भूले।
0: और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम भूली विसरी आदे 89.6 रेडियो डी

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

0: friends, my name is Aastha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
1: सवेरा हो गया है, चिड़िया घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, तुम भी तैयार हैं, स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम।
2: डीएस साइंस एकेडमी, जहां पढ़ाई होती है डिसिप्लिन के साथ, कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, पर्सनल गाइडेंस के साथ, रेगुलर टेस्ट, डाउट क्लियरिंग, रिजल्ट फोकस।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली बिसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

किथे जा रही है? ये खुदा दे इश्क चरंगी रूह है। ये 12 साल दा सी जदों दी मां फौत हो गई सी, पर यूं लगता वो अज भी ये आस पास है, क्योंकि वो आखिरी तमन्ना सी कि वो पुत मजार की सेवा करे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: सेम प्लेस सेम टाइम, वन ईयर लेटर, प्रॉमिस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

दोस्तों वक्त हो चुका है 3:53 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों हमारी स्टूडियो लाइन कॉलिंग खुल चुकी है और आप कॉल करें अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: बता दिया।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन बीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
2: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन, आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाएं।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
4: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
5: गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों वक्त हो चुका है, 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन,
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5।

तो वक्त हो चुका है 4:17 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी। दोस्तों थोड़ी ही देर में आप मिलेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम के साथ।

0: हर बीट में है शहर का कमाल। DS 89.6 शहर की धुन।
1: 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 पे रेडियो DS
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक। 89.6 DS FM पे,
1: यहां हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 39 डिग्री सेल्सियस और वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस।
1: हेलो
2: दीदी नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
2: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से।
1: और सर कैसे हो?
2: दीदी मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, आपका आशीर्वाद बांके बिहारी कृपा है। आप लोग कैसे हैं?
1: सर ठीक है। और मौसम कैसा है वहाँ का?
2: मौसम बहुत गर्म है, खिली खिली धूप है, गर्म गर्म हवाएं हैं, उमस भरी गर्मी बढ़ गई है। थोड़ी सी बारिश सुबह 10-15 मिनट के लिए हुई थी, इसके पास जाते धूप निकल आई है।
1: यहाँ पर सर बारिश ही नहीं हुई, 2-3 दिन हो गए
2: जी,
1: गर्मी हो रही है
2: जी। निश्चित काफी गर्म हो रहा है, जितनी बारिश होनी चाहिए आजकल बारिश हो नहीं रही।
1: हो ही नहीं रही सर, बरसात नहीं तो पिछले साल बरसात इस टाइम तो आने लग गई थी, अब क्या तो बरसात ही नहीं है।
2: बिल्कुल बहुत कम पानी है।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: राजस्थान में है ओ सांवरिया थारो दिल दीवानो।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।

0: हेलो
1: हेलो भाई, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम टीपू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फूलों के साथ दिल भी मिल जाते बाबू।
0: फूलों के साथ दिल भी मिल जाते हैं बाबू?
1: हाँ, फूलों के साथ दिल भी खिल जाते बाबू। दिल का नाम है रोटी।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: धन्यवाद मैडम।
0: वेलकम सर।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते दीदी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना बढ़िया लाए हैं।
1: हाँ जी बताइए।
0: मैं वही दर्पण वही।
1: कौन सा सर, दोबारा बोलना।
0: मैं वही दर्पण वही।
1: मैं वही दर्पण वही
0: जी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: थैंक यू,
1: वेलकम सर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: सागर मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मीणा जी की मीणिया जी।
0: बिल्कुल सर, सुना रहे हैं आपकी सर।

0: तो सागर मीना है।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: यूपी टू यू, मुझे तेरी पसंद है तो तेरी मर्जी।
1: ओके जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर के
3: हेलो
4: जी नाम क्या है आपका
3: अंकुर
4: कहाँ से बात कर रहे
3: गंगापुर से
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगी
3: संभल के
4: ओके सर सुना रहे हैं आपको फरमाइश करेगा

0: हेलो।
1: हेलो,
0: जी मैम, क्या आपका?
1: मेरा नाम
0: गंजा। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तेरा ही सुनती आना।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: ऐसी राहों में।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:58 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस। और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
2: हेलो।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम निखिल सैनी है।
3: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
2: गंगापुर से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: अमित सैनी का हाथ में कट्टा कट्टे में गोरी।
3: सर ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: पूजा शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रही?
0: नंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: आशिकी आ गई।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना
2: वो तुम्हें किस कर लेगा
3: घर

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: राज मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: बामनवा।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रामायण का सार।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन
1: 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: हेलो हेलो हेलो, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ इज इन इंग्लिश। इतनी इंग्लिश नहीं आती मुझे, पर आपने ट्यून इन कर रखा 89.6 रेडियो डीएस, और इंग्लिश फनी लैंग्वेज तो है ही भैया। अमिताभ बच्चन का हमें डायलॉग याद है, टॉक इन इंग्लिश, वॉक इन इंग्लिश, वो सब कुछ याद है। पर आज एक नया टर्म मुझे मिला है। मैं इंस्टाग्राम चला रहा था, निबलिंग्स। अब निबलिंग्स क्या होते हैं? जैसे सिबलिंग्स होते हैं, हम अपने छोटे भाई बहनों को सिबलिंग्स कहते हैं, वैसे ही हमारे जो नेफ्यू नीस यानी कि जो भतीजे या भतीजी होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में निबलिंग्स बोल सकते हैं। पर फिलहाल अब सॉन्ग सुनो 89.6 रेडियो डीएस पे।
1: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

अच्छा वागी, हमारा जो नाई है ना वो हिंदुस्तान में, नॉर्थ कोरिया में नहीं। क्यों? क्योंकि 89.6 रेडियो डीएस आपने ट्यून इन कर रखा, अमेजिंग गाने तो आपने सुने, लेकिन आज का शो यही तक था। जाने से पहले कोई शायरी नहीं, एक अमेजिंग फैक्ट कि हमारा नाई और हम सबको बे शुक्र गुजार होना चाहिए कि हम नॉर्थ कोरिया में पैदा नहीं हुए, क्योंकि वहाँ लड़कों को, मेल्स को सिर्फ 28 टाइप्स ऑफ हेयर कट अलाउड है, जिसमें से आप सिर्फ एक ही टाइप का बाल हेयर कट करवा सकते हो, और औरतों को, विमेंस को, फीमेल्स को सिर्फ 14 टाइप्स ऑफ हेयर कट अलाउड है। यानी इसके बाहर लड़के अगर 29th ट्राई करे और औरतें 15th ट्राई करे तो किम जोंग उन उन्हें सुंदर रहो अमेजिंग गाने सिर्फ और सिर्फ 89.6 रेडियो डीएसपी।

सुबह की शुरुआत अगर प्रसाद से हो तो दिन कितना अच्छा जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं कि प्रसाद की बहुत महत्वता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रसाद होता क्या है? हमारे शास्त्रों से हमें पता चलता है कि प्रसाद केवल वो खाने की चीज नहीं है जो हमने भगवान को अर्पण की है। हमारा पूरा जीवन भी एक प्रसाद हो सकता है। वो हर चीज जो हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं वो प्रसाद बन जाती है। वो हमारी बातें हो सकती है, वो हमारा कर्म हो सकता है, वो हमारे रिश्ते हो सकते हैं, वो हमारा पूरा जीवन हो सकता है। तो सोचिए कितनी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में प्रसाद बना सकते हैं। लौटूंगी थोड़ी देर में, सुनते रहिए। मैं हूँ आरजे खुशी।

0: हर इंसान अपने आप पे काम करना चाहता है, अपने आप को और ज्यादा जानना चाहता है। मैं हूँ आरजे खुशी, और अगर आप भी अपने आप को जानना चाहते हैं ना, तो थोड़ा सा ये देखिए कि जो भी हम खा रहे हैं उसका प्रभाव हमारी मानसिकता पे क्या पड़ रहा है। हमारे शास्त्रों से हमें ये पता चलता है कि जो भी हम खा रहे हैं उसका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी मानसिकता पे पड़ता ही पड़ता है। अगर आप गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट कर रहा है और कौन से टाइप का खाना है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। कई बार हम लोग ऐसी चीजें खाने लग जाते हैं जो हमारी मानसिकता खराब कर रही होती है, लेकिन क्योंकि हम ध्यान नहीं देते तो हमें पता नहीं चलता। और अगर हमने इस छोटी सी बात पे ध्यान देना शुरू कर दिया तो हमारा जीवन बहुत बेहतर हो सकता है। लौटूंगी थोड़ी देर में, मैं हूँ आरजे खुशी।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: कहते हैं कि अगर जीवन में ऊपर वाले की सहायता चाहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की सहायता जरूर कीजिए। मैं हूँ आरजे खुशी, और सहायता का मतलब केवल यही नहीं है कि हम किसी की आर्थिक सहायता कर दें या कोई गरीब हमें मिले तो उसकी ही सहायता करें। हमारे आसपास कितने जने हैं जिनको हमारी जरूरत हो सकती है, जैसे बड़े बूढ़े लोग जिनको चलने में दिक्कत है, जिनको बैठने में दिक्कत है, अगर उनकी सहायता भी हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम ऊपर वाले के और करीब जा रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आसपास ऐसे मौके ढूंढने लगे जहां हमको सहायता करने का मौका मिले। इसी सोच के साथ अभी यहां से जाती हूं, मिलूंगी कल इसी पते पर इसी समय। मैं हूं आरजे खुशी।

गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है। गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
1: हेरा रे रा, हेरा रे रा।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
3: जो

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएसआई अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का दड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। तेरा रे राम,
1: तेरा रे राम। नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का लड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSIS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे राम, तेरा रे राम।
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSIS।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: तेरा रे
2: नमस्कार, गंगापुर सिटी में आपका अपना रेडियो दोस्त ऋषि मीना। आप सुन रहे हैं रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का गड़का। सुनो दिल से दिल तक रेडियो डीएस के संग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DSIS अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी। दिल से दिल तक।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM।